0: 나 공그다 봐.
1: 아.
0: 어. 난 강하더라. 야들아.
1: 야, 아니.
0: 아, 드디어 하라게가. 로따홍.
1: 로떼해.
0: 쇼따홍.
1: 쇼떼해.
0: 갔다홍.
1: 갔대해.
0: 굿. 빗다홍.
1: 빗대해.
0: 굿. 릭다홍.
1: 릭대해.
0: 빨다홍.
1: 빨대해.
0: 자다홍.
1: 자대해.
0: 로따홍.
1: 로떼해.
0: 쇼따홍.
1: 쇼떼해.
0: 갔다홍.
1: 갔대해.
0: 아. 빗다홍.
1: 빗대해.
0: 아대기 마탕시디냐. 아항범인 가다보니. 와이칭도 아이 하이라께 아항바 와이칭도나 낭나무 하이라까다바 하이비디 낭나네 아항바메라까다바 고 하이라께 메 레이레 아두가 아항바 고 아두가 로션바다 훙 하이레 마락도 메라 어
1: 메 काम करती हूँ
0: गुड गुड वेरी गुड अदुगा मथंग मोहरागे हम आहांग बलेरे हाय
1: हेलो अदुदी हम हम पुस्तक पढ़ती है
0: गुड वेरी गुड अदुगा मो मैं आहांग बलेरे अदुगा हूँ नलो चले मेलो मैं
1: नलो चंदे बा
0: मैं ना हो रे
1: मैं पुस्तक पढ़ता हूँ
0: वेरी गुड अदुगा हम फल अदुगा आहांग बलाई रे अदुगा लोशल पतो हूँ
1: हूँ अदुगा
0: हम फल आहांग बा हूँ
1: हम फल खाता हूँ
0: गुड अदुते यंगो लड़की से इरी बसे मुंबार ओक्से उचारों जो ब्रेंगे लाइची यंग का पारो ओपा पारो
1: पार आगे
0: चिदे इरी सिंजे पारो
1: जबान जवान
0: गुड बासी
1: बासी
0: वासी फरे फरे नशे की दिशा सुम लो चला ची कोई मेला दीवार नहीं को लो चला ची को
1: होय मा लो चला ची

ताहनजरीबा इसायसिगा लोइनेना गुड मॉर्निंग मणिपुर गी थौरम लानथोकतुना ताहनजबा मतांगसिदा लुइसिनजरी थौरम सरुक याबिराखिबा मदि थौरम लोइबा फावबा ताबिखिबा पुमदा मकपु अमुक कहना थागत बफोंदुकचरी

0: ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯌꯨ ꯕꯤꯚꯥꯒꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥ ꯁꯔꯃꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯌꯨ ꯕꯤꯚꯥꯒꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥ ꯁꯔꯃꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯤꯠ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ games para athletes sanak takman phang ahanba bharat ke sanar oire pauloi jare
1: thorom sa doktuna tahanjari basse akashwani imphal gi fm sangai channel degini
2: हेलो
3: राजेश जी मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो दूसरे कमरे में जाइए अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं लंबे जाएंगे
5: 10 लाख दीजिए बच जाएंगे
2: सर इतने कहाँ से
5: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए बाकी बाद में
2: सर 2 लाख
6: क्या हुआ पापा
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं
4: अरे
2: काट दिया
6: पैनिक मत कीजिए पापा डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है ये सब फ्रॉड है
2: फ्रॉड
6: पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे
7: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए सतर्क रहिए

0: ताहनजरीबा गेद असिग लोइनना तांकक असिद गेद लानथोकतुना ताहनजबा मतांग असिद लोइसिनजरी आकाशवाणी इम्फाल हौजिक चैनल असिद मखाताना चथजरकदबा थौरम सिंगिदमा कोंजेंगबम निर्मला चनुदा खुसिनजरी
1: थागचरी एखोगी अनाउंसर गोलमई थाइथुलियुबु थौरम ताबिरनबा खुदिमबु पुंजा असिद मुकहना तारामनोचरी खुरुमचरी

0: हेलो
1: हेलो, गुड
0: हेलो, गुड आफ्टरनून।
1: आफ्टरनून मैम।
0: होय कना होय बीरा बनो
1: आई एम नुम थम गाव दकि नुम मे कपम तनु जा
0: तनु जा तराम नोक चरी
1: पाता चरी मे
0: बजो। होय होय करी वफम थम बिगेनी
1: मैम। आई ना हाइजनिंग द पी बथम गा नुपा से नुपा न तो विगई ने या बनु पी ने तो वगन या दबा अतु दो अखुन कितन ꯇꯊꯧꯕ ꯈꯣꯠꯂꯨꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯉꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯎ ꯂꯥꯡꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯦꯝ।
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯥꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡ ꯆꯠꯊꯣꯛꯄꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤꯀꯣ। ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯗ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯊꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯅꯕꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥ ꯇꯥꯕꯤꯕꯀꯣ, ꯑꯃꯅ ꯃꯊꯛ ꯊꯪꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯦꯕ।
1: ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯦꯝ।
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯇꯅꯨꯖꯥꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯅꯤꯉꯣꯝ ꯊꯣꯡꯖꯥꯎꯗ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕꯤꯕ ꯀꯩ ꯂꯝꯒꯤ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯑꯣꯏꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯣ?
1: ꯅꯤꯉꯣꯝ ꯊꯣꯡꯖꯥꯎꯗꯒꯤ ꯀꯩꯕ ꯃꯦꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯠꯂꯦ।
0: ꯑꯥꯏ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯅꯤꯉꯣꯝ ꯊꯣꯡꯖꯥꯎꯗꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯁꯦ? ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯑꯣꯏꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯪꯖꯕ?
1: ꯑꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯃꯇꯥ ꯍꯣꯜ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠꯇꯩꯅꯦ ꯃꯦꯝ।
0: ꯑꯣ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩꯗꯒꯤ ꯅꯤꯉꯣꯝ ꯊꯣꯡꯖꯥꯎꯗ ꯄꯥꯟꯕꯤꯕꯀꯣ? ꯏꯆꯥꯗꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯣ?
1: ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯃꯦꯝ।
0: ꯑꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯕ?
1: ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯨꯛ ꯁꯨꯔꯦ।
0: ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯨ ꯀꯥꯕ ꯍꯧꯔꯕꯀꯣ?
1: ꯑꯥꯎ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯕ ꯍꯧꯖꯔꯦ।
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯨꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯈꯨꯠ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ
1: ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯦꯝ।
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯒ
1: ꯇꯥꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯁꯦ ꯂꯧꯗꯕꯤ ꯃꯤꯁꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯏꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯅꯕꯒ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯦꯝ ꯇꯥꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄꯒꯁꯦ।
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯨꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯗꯣꯏꯁꯦ
1: ꯑꯧ
0: ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯀꯣꯂꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯗ ꯇꯅꯨꯖꯥꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯈꯣꯠꯊꯣꯛꯄ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯊꯝꯕꯤꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯃ ꯌꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯒꯗꯒꯦ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯅꯨꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯁꯨ ꯇꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯗꯅ
1: ꯃꯦꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯠꯂꯦ
0: ꯇꯥꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ?
1: ꯈꯤꯇꯪꯕꯨꯗꯤ ꯇꯥꯔꯦ।
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯅꯨꯖꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯅꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯅꯨꯖꯥꯗ ꯃꯃꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯈꯔ
1: ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛꯄ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯈꯔ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯦꯝ।
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯅꯨꯖꯥꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤꯀꯣ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯍꯩꯅꯍꯜꯂꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯨꯔꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯅꯨꯄꯤꯗꯅ ꯌꯨꯝꯕꯨꯔꯦꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯣꯛꯂꯛ ꯊꯥꯛꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯇꯝꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯏꯆꯥꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯒꯦꯀꯣ ꯇꯅꯨꯖꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ
1: ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯃꯦꯝꯕꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
1: ꯅꯍꯥ ꯍꯌꯦꯡ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯇꯔꯥꯝ ꯂꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯅꯨꯖꯥꯗꯁꯨ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯣꯂꯔ ꯑꯃ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯦꯝ।

शुक्रिया निर्मल। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित संगाई चैनल में, और आपको हम सुनाने जा रहे हैं गीतों के तरंग और उमंग लिए गीतमाला में। आज का ये कार्यक्रम है फिल्म संगीत, और इस कार्यक्रम में आपका साथ निभाने आई हूँ आपकी दोस्त, आपके हम सफर वैलेंटीना।

इस बरसात के मौसम में ख्वाहिश हम ऐसे रखते हैं जैसे कि ये पहला हमारा गीत है जो फिल्म संगीत में है, और ये गीत बतलाता है, क्या बतलाता है भैया, बतलाता है कि जब हम किसी को पहली नज़र में अपना दिल दे बैठते हैं तो क्या होता है। इसी अंदाज में, और वो भी कुमार सानू की अंदाज और उनकी ही आवाज़ में, ये गीत है जान तेरे नाम। वाह, नाम पर देखिए और ये गीत भी सुनिए, वैसे ही नाम है और वैसा ही ये गीत है। नदीम श्रवण के संगीत पर ये गीत है, अजीज खान और शाहनी के बोल में। ये है गीतमाला का जान तेरे नाम।

दोस्तों, आपको अभी इसी पल किसकी फिक्र ज्यादा लगी रहती है? किसकी लगी रहती है? शायद अपने प्यार की, अपने दिल की। इस दिल की फिक्र को दूर करने के लिए क्यों ना इस शौक हसीना की इस गीत को सुने। एक चंचल शौक हसीना हुआ करती थी, और सुनते हैं इस गीत को अभिजीत की ही गायन में फिल्म बागी से। समीर के लेखन पर ये गीत है और संगीत आनंद मिलिंद द्वारा।

और दोस्तों इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो दिल की बात को अनसुना करता होगा। दिल की बात को हम हर रोज तो सुनते हैं, दिल तो ठक ठक करता रहता है, अगर ये रुक जाता तो बस क्या हो जाता दोस्तों, ये जानते हैं ना आप। इसीलिए तो दिल के साथ हम चलते हैं और इसी जीवन को हम प्यार करते हैं और इसी जीवन को चलने वाले उस साथी को भी उतना ही प्यार करते हैं, दिलो जान से चाहते हैं और लुटाते हुए अपनी जो भावनाएं हैं ये कहते हैं। ये अगला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक के एकत्रित स्वरों में नदीम श्रवण के संगीत और समीर की शब्द रचना पर ये गीत बनी हुई है फिल्म सलामी से।

अगर आपने सुना हो तो क्या आपने ये भी सुना कि कोई प्यार का इजहार गीत के जरिए कैसे एक माइक पकड़कर ये करता है हीरो इस फिल्म में, जो है फिल्म कुकू कोहली की निर्देशन में बनी फूल और कांटे से। ये 90s के ज़माने की बहुत हिट फिल्म है और इस फिल्म में नज़र आए थे अजय देवगन के साथ मधु, और इस गीत में आवाज़ है कुमार सानू के साथ अनुराधा पौडवाल और संगीतकार नदीम श्रवण के संगीत में पिरोया गया ये गीत है मैंने प्यार तुम ही से किया है।

दोस्तों, दिल कहता है, क्या कहता है कि अगर हम किसी को ना देखें तो हमें चैन, हमारा दिल को राज नहीं आता। शायद राज आए इस गीत को सुनने के बाद। और इस गीत में रंग भरने जा रही है हमारी दिलकश अदाकारा दिव्या भारती। बहुत ही मशहूर 90s के ज़माने की ये अदाकारा है और इस फिल्म में इसी अदाकारा पर ये गीत फिल्माया गया है। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गीत है, समीर के बोल और नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में।

दोस्तों, दिल के तारों के जरिए पिरोया गया हमारे गीतमाला का ये संगीत है। दिल के तारों को छेड़ते रहिएगा और गीतमाला को सुनते रहिएगा और अपने इस दोस्त को दीजिएगा इजाजत और रहिएगा हमारे दोस्त निर्मला के संग। नमस्कार।

दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरला, माहे, आंध्र प्रदेश के मौम खरादी नोंग सूरब जाए अमरम आसाम इसिंग इचा इफेम खर फगले मनुम राज्य के जिला तरुक्ति हौजिशुमा इसिंग थुमजिंदुन लेबना इचा अवाब मायोगनरी इचा असन ख्वाई हेन सोलब शिवसागर जिला ऑफिसल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मतंग लोने मई क्या कनबी थब लेपन चतरी हौजफाद इचा असन राज्य के मई लाख मरी हेन सोहनखे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के शर्मिला धनकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 की नुपी के शॉटपुट A57 सना के तकमा लारुपदा नुंगाइबो फोंदोकली पाउलोइजरे

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay kore, nang adu kena lai do kai sakhe hai do.
1: Ai gi dukan ma hang go do. Advertisement nam ta hab ke na nam hon da ta na gi na la ini.
0: Eh, yam phai ke no do dia. Kari kari no ban nang gi dukan da phangi ka hai sina.
1: Ai gi di variety store ne. Wholesale su, adu retail su dum ya ore da.
0: Oh, adu ore di ne. All India re do in phal da kok chalu ya dro nang bo.
1: Oh, adu mi loi namak ta yohan babu ngam do ri bro du bo.
0: Kari gi ngam boi do no hai. Chingkhong singa da na ta na. Ahal na ha. Me pum tik na ta na ri ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
1: o o mamal di ke hai rak toi jano adu ai di amaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali ma le
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi ho ro ga ne so is pa ya mam su le mi dole
1: o o adu ai tar ga di khwai di fa ba option si masina oi re ni na di khalle
0: to to to to oi doi de masina khwai di fa ba
1: umna ma kutaram no chari आकाशवाणी इंफाल की कमर्शियल सेक्शन दा लेंशन बिदउ अदोम की पाउजेल मियोय लाखा कयादा यहन जगे
2: ए तो इताओ
3: कुइरेदा उनखिदबा
2: होइने कुइरेदा इताओ नोय खोइनु उनखिदबसिया गरम गरम पानदिरी
3: खंगदे दै ताव तौरिसे ngamna ngamna baiduni ताउन खंगबिरिदुनि आइदि पोथोक पुथोक मियोइनिना
2: आइदि
3: पोथोक सिंगसे मियामन पामना नबगि दमकता एडवर्टाइजमेन्ट नम तौगेन कन्न खलमनि बनि
2: करिया एडवर्टाइजमेन्ट
3: होय
2: हेरा अदुगिदि करीम देवारुरनु सिसिसि कुदत्ता मतम अमत्तदा मियाम सेन थुंगन खंगन बयारबा मितन कुपदा मियोइ मिलियन गयागि नाकोंग योहन बयारबा आकाशवाणी इम्फाल ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल दने एडवर्टाइजमेन्ट तौबिरो
3: होयनि तो मधुन फवतार
2: अदुनी ताओ अदुनी
1: असेंग बनी एडवर्टाइजमेंट की दमक तदी रेडियो न ख्वाइदे की फरब पाम बईनी अदोंगे एडवर्टाइजमेंट की दमक आकाशवाणी इम्फाल की कमर्शियल सेक्शन गा तानबियो
4: काई दुलो यशी दयाम नाना
5: दासिं खैगा एचआईवी टेस्ट तोरु के तोबा
4: कैगे न नबानी दे एचआईवी टेस्ट तो दोइदे
5: इबानी लो होमगी अहन मसेन हाइना खरे अदा इबानी एचआईवी टेस्ट तो थोसेना
4: नबानी दी याम कुइरे दाइने खंगनारकपा अदुगा कैगिनो एचआईवी टेस्ट तोदैदे नबानी गिसे अमन अमबु याम थाजना दबै वानिने
5: अदै नतेदा एचआईवी टेस्ट तोदुना एचआईवी लै नत्रग लैतेना खंगतो पाइबसे याम न फब थबकनि
6: मसी हकजांग फन लैबा अमदी अखोयानि गि तुमगि पिनसिगि दमकनि अदुना एचआईवी टेस्ट तोदुना इसागि एचआईवी स्टेटस खंगतो पाइबसे रुटीन हेल्थ चेक कपकि सरु अमो हेलादबने
4: एशु एचआईवी टेस्ट तोदथोमिङे दुदा कई हम पॉजिटिव हो रहा है मैम खाद्रो
6: एच आई वी टेस्ट तब है कन्फिडेंसियल नंग टेस्ट की रिजल्ट हाईद नंग एड्स की मरम हेन खाद एच आई वी हेल्थ लाइन नंबर 1097 कॉल तौसलो अकूप मरो लोन खाने चलो
7: लौमीसिंगी नुमायरब पाउजेल मगुल लेरब मचल अनिन पुंसिलग सेंब बुलेट जीआर फंगबिरगने बुलेट जीआर चाइबना लौड तारक मरेक मना कोंचिन बी मरुचिक पी उतोंग ताब मसुं वाहिक पुलाइन फन बतनतना मतम कुइना ngak thok tuna thambangame बुलेट जीआर चाइबी तुना लौबु ngak thok tuna thambiyu असिंग बलौमी ओइबिरो काउबिरगनु बुलेट जीआर फंगफम हिलदान हाउस गवर्नर रोड पौना बाजार अमदी अदोमगी मनाक नकपा हिदाक योनफम सिंग

0: शिक्षण भी गदा नापी मांगन बंगम्बा मसल सुने या और बसाती दी संगी मको किए पनी काउबी रगनु लोमी सिंगे मरु साथी
1: आकस्मानी फाल सतहजारी पर थोरम पड़ेंगे से निमिदांग पुंग तरे मिनट निफु मंगा कंगला से लिंदा थाई से ही शेल अंतोप से गनी हाजिन निमिदांग पुंग तरे मकाई तारे मणिपुरी तो पाउक्ता बिरसी
2: आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी ने पाव पजरी आहन बड़ा मरु इब पाव साम कुंठा मंगा सुबह दुरान कप की इम्फाल ले नसी जगी कोमलम्पाक मेन स्टेडियम द राज्यपाल अजय कुमार भाला ना होदोकरे एजुकेशन यू की डायरेक्टर एल राधाकांत नाहरी राज्य सिद लेरिब कॉलेज सिंह की अवार्ड पर ओजा सिंह अठुब मतम द मेनचिन नब थौरंग लेरे मालेम की हेपाटाइटिस नुमित मणिपुर सु पक सन पंगथों नखरे इम्फाल इ जिला की सैजांग चेरावसिंगी सेक्यूरिटी पोस्ट न खुजुखुलाई के मरुप फगले लोकसभा नंगसी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑन अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल लिसिंग अनि कुंतरुक पुथोक्तुन खनखरे साम कुंठा मंगा सुबह दुरान कप की इम्फाल लेक नसीदगी इम्फाल की कोमलम्पाक मेन स्टेडियम द राज्यपाल अजय कुमार भाला ना हुदोकरे एशिया की ओइना ख्वाइदे की लीरब फुटबॉल टूर्नामेंट असी हौदोपगी थौरम द नाट की ओइबा तुंगान तुंगान ब थौरम सिंह थांग ता याउना जगो इसे उठकी हौदोपगी थौरम द मुख्यमंत्री इमरान खेमसान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ जीओसी ईस्टर्न कमांड याउना अतै ऑफिशियल सिंह सरुक याकी कप असी लेबाग असी की तुंगा तुंगा मफम सिंह कोलकाता गुवाहाटी शिलोंग अमसुंग इम्फाल द सनरी इम्फाल की कोमलम्पाक मेन स्टेडियम द नसी अमसुंग था असी की कुंथ्रा लोइनना मथंग था की अहुम मंगा मापन अमसुंग तरा नितुई द सानगदौरीबा जाम कुंथ्रा मंगा सुबे दुरान कप लिसिंग अनि कुंतरुक मेचिंग आकाशवाणी इम्फाल ना संगाई चैनल द लाइव कमेंट्री तौदुना संदोकनी नसी सानकीबा मेच अदु आकाशवाणी इम्फाल ना संगाई चैनल द लाइव कमेंट्री संदोकी
3: जैसे फिफ्टीन लगी जैसे नंबर 16 सिद्धार्थ सिद्धार्थ ने बोल सी कंट्रोल तौना ना बहुत ना बने तो वो हमौदे येलो कार्ड अब शत पगे में सकते नहीं येलो नेरो का एफसी की प्लेयर द जैसे नंबर 16
2: राज्य की यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन विभाग की डायरेक्टर एल राधाकांत नाहरी राज्य से लेरब कॉलेज सिंह की अवार्ड पर ओजा सिंह अठुब मतम मेनचिन नब थौरंग लेरे इम्फाल की निताई पर चुटेक्त लेब डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डीआईपीआर की ऑडिटोरियम पंगथोप पाउ की मिफम डायरेक्टर एल राधाकांत नाहरी राज्य से लेरब कॉलेज सिंह की लेफम थोप ओजा की सेंशन पोस्ट अच्छी लिसिंग अनी चहुम हूंपु तरह तरुक ने हौजी पुनः ओजा चार्टेड मरफू मंगा की अवार्ड पर लेरे मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन एम पी एस सी की खुतांग अवार्ड पर असिस्टेंट प्रोफेसर चामी कुंथ्रा लौनब थौरंग राज्य की हायर एजुकेशन की फिवम हेन फगट हनब अहेंब असिस्टेंट प्रोफेसर चनी कुन मंगा खनब की अयाब लेरे
4: 2030 स्टैंड अलोन बेड कॉलेजेस मदुगिदमक्त स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव मैम लौखलीबे चौरान मणिपुर स्टैंड अलोन टीचर्स एजुकेशन से चौरान ट्राइन पानकुम फवमना गवर्नमेंट कॉलेजेस इंस्पेक्शन तौर गो एन सी टी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन नई अयाब लेरें पीरनी सिंगदसु हाने रेबन कॉलेज फंग मराम की डॉन बोस्को कॉलेज लईना स्टेट यूनिवर्सिटी तारगदी आई आई टी एफ की प्रोग्राम से थाब जाए डी एम यू की अखोना थानी कौरी
2: मखा तान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिसिंग अनि कुन की मखा राज्य से की मही लोसंग तुगान तुगान अनौब डिसिप्लिन चिंग हांगदोप की तंगाई फतब लगली सरकार गवर्नमेंट एडेड कॉलेज यांखैमाथोयना अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पीरी एन ई पी की मखा कॉलेज फोर इयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिंह हांगदोकले राज्य से लिसिंग अनि कुंथ्रा फाउब की मनुंग मपुंग फाब बेड कॉलेज हांगदोकनब थौरंग तौरी लोइनना खनगलब मही लोइसंग इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हौदोकनब हुनरी मालेम की हेपाटाइटिस नुमित मणिपुर पक सन पंगथोकनखरे नेशनल वायरल हेपाटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम ISSS National Health Mission Manipur amasung Directorate of Health Services Manipur na punit sinduna raise thaki oiba thorum Imphal gi classic grand data pangthoki palan thorum achi ki nungi oiba akulondi let's break it down hai bisini thorum tu da saruk yaratuna health services ki director Dr. N Hemant Kumar hai laina asi matam jana layang labamdi sakshil thorang lokhlabadi kudong tilngai oite Thorum to the NSM State Mission Director Dr. M. Dinesh Singh Amisung Family Welfare Services Director Dr. N. Bino Singh Sarukyaki. Namil Asikamari Lenana Institute of Liver and Digestive Sciences RLDM Hospital Sinduna Miyamda Lena Asikamaram the Kanganaba Kongchet Amasatki. Kangladagi Huraga Kwagatil Teleba Hospital Asida Kongchet Adulusinki. Tungda Hepatitis Kimatanga Kangai Singna Wanganki. District Health Society Tamilong Sinduna World Hepatitis Day Thorum Tamilong District Hospital da ngasi pangthokre Thorum tu da Tamilong gi SDC Sebio Daimai amasung Tamilong District Head Hospital gi Medical Superintendent Dr. Francis Daimai serukya ki paugi marak thana atenba break ama
5: Free varicose veins consultation camp Lakadoriba July ki tarikh kuntra dagi August ki tarikh amma phawba Shija Hospitals Langolda free varicose veins consultation camp pangthok chagadori Adomna khongi sarukta singli chaukthokpa gi layong asi leibiragadi Numit Singh asida lingbiraktuna khudong jaba asi laubiho Leisure treatment amadi investigation singda su matik jaba discount pizagani akopa maro ki damak Shija Hospitals Langol Natraga 9611609611 da pau phawiro
6: Maruplong mi isil inaw sing, adong itamag ano po nung ay pausel ang mapudo na laksari. Law da taba may olsik pi manakon sin bi utong tin amadin mahit jupi loy na nalay nung dalay ba min na udabatil makal kaya basu amok tatahat pang amatil hari hidang ni. Stanley hidang matal lohong pundo na siyemba at upa kampani amat na putok triba til hari hidang ni. Law sang amamada Stanley kezi amakaksay ba na numit nyo mga ni ditil makal kaya dagi mapung pa ng ato pangamli. Law mi ikoy mitpang na si, selso chang daba til makal kaya basu amok tatahat pang amba Stanley, Fangfam, Thaugzal Agro Manipur, Sagol
2: Tapi di bawah si Agus Bani Imphal Dagini. Imphal Zila ke Sejang Jairok Jung Dagi Security Force Nangasi Kuzukulai ke Amarum Pagale. Police ke Pound High Kulai Jung Aduki Manungda Magazine Yauba .303 Rifle Ama 12 Volt Single Barrel Ahum .22 Rifle Ama Anti Riot Gun Ama Kapayari Bamaru Nipuhumdoi Hand Grenade Ani AK Rifle ke Magazine Ama Yauri. Nipan Chuba IRB Commando Battalion Sinduna Nomagi Oiba Pre Mental Health Camp Amangasi Kabisoita Leba Battalion Headquarters Pangtokre Camp Adu Community Policing Program Gi Sarukama Oina National Health Mission Ga Kusam Naraga Pangtoki Bani Amarumda Taruk Suba IRB Pangaina Sinduna Nomagi Oiba Awareness Program Ama Pangai De Leba Padi Imom Koi Sindam Sangda Pangtokre Unit Asiki Medical Officer Singna Drakna Kunai De Piba Saitengi Matangda Wanganki Federation of Civil Society Organization Folks Manipur na Sindunangasi Manipur University ki MIMS Conference Hall da Pangtoki ba Nomaki oiba khana nena bagi mipham na Raija si ki apun ba saktam ngak na ba Chakut ba tangdulay ta ba Raija ama ohen na ba Puna thabak taumina na ba kanglup khurup khuding makta afil tokre Lub asik acting president Biden Yai Masahana Sabapati Amchung Hanagi Manipur Human Rights Commission gi chairperson Oiramba Senate Advocate Khaide Manina moderator Oiduna Pangthokiba Resurfacing the political upheaval issues and challenges haibe hiramda Pangthokiba nomugi oiba khana nene ba mipham aduna wadip kaya loki mipham aduna raija sida leiba phurup singki marakta shanti purak na ba wari sanaba lokot na ba khongthang singda mating pangba amchung manipur gi haujik leiba tangdu leita da ba phibam asi loishinna na ba phurup singki marakta wari sanana ba gi lambi ya na ba public convention ama athuba matamda pangthok na ba gi matangda wari sing loki Senapati Zila da BJP Henama Pangal Kankat Hanabagi Mipam Amangarang Zila Asiki Christian Colony de Labour Jaikari Community Hall da Pangthokre Mipamadu da BJP Manipur Pradesh ki Vice President N. Nimbus Singh General Secretary P. Premananda Mitaina Singhba Dolasiki Lusingba Kaya Sarukya Ki Central Bureau of Communication Sandel na Sinduna na Samukta Bharat Abhiyan gi matangda outreach program ama Sandel Jilagi Liwa Chaning da Leba Destitute Children Home da Pangthokre Sandel Jilagi Tampi Lamphai Dangarang LPG cylinder pokhai tuna yumai sak pagi thodok ama Assam Rifles na kankre Assam Rifles ki PR ona cherol amata hai mai sak pagi pau phang badagi saluk post leba Assam Rifles ki personnel singna mai sak pakan bade changba khuju khulai sing water browser na chingba sijin aduna mai sak pagi thodok adu kanna bhonaki Assam Rifles na sinjuna World Nature Conservation Day gamari lenana Bishnupur jila ki maipam lotpa chingning awanglika emasung sandel jila gi larung machina chingba mapham singda ngasi uzara sing thabagi camp sing pangthokre Imphal iski tunga tunga ba mapham sing sanjen thong thangapat mapan mahabali palace compound 14 quarter AIR Imphal da thasgi kuntha amki ayupung tare tagi ayupung mapan phawba mai phangloi haina MSPDCL na thokpa cherol aman hairi amarom da nune jila ki nungba manak ta leiba rongdai village asu ngarang ayupung ni pan dagi thasgi kuntha ma toiki numidang wai rompung taruk phawba mai mutkani hairi Idilpung water treatment plant tangai fadana chemjin sajin gataba management ki thabak tawgada bana hayeng lagi horaga numidhumni plant asina konba mapam singda ising piroi haidi India med bibakna haidi lagliba numit kharani asida manipur yauna awangnupuk raija singi mapam ayambada akan banong churaba yai bibak asina hai nongchu bengal sikkim delhi haryana chandigarh himachal pradesh maharashtra uttarakhand madhya pradesh kerala mahe andhra pradesh ki mapam khara dangasi nongchuraba yai Amirom da Assam da haujik ising jawgi phibam khara phagale adumai namak raija se ke jila tarukti haujik su ising thumjin tuna leibana ichawgi awaba mayok nari ichaw usna khwaide ki hena chokalaba Sibsagar jila da official singla district administration ki matenga loina na mi kanba ki thabak leptana sathari haujik phawbda ichaw usina raija se ki miyoi lakmari hena chokalle pawgi marak thana atenba break amamuk
7: To cross it towards the back stick, it's kept in play.
8: As Baba, hold your mouth, Andre. Me still agree.
9: Hey, regulation time lo kibani da. Hauji extra time kra half kini. What di ne?
10: Ibungo, lairik paro yari. Mui ba thangna ba tom hoigi imu ngasi loi ni yore SIR gi enumeration form su pisin banang hodra banina dra voter list ta maming yawra roi ne kwa
9: mama nang ama khangjungang dar pang de ngangi o haujik su yari haiba
10: e yari haiba
9: hoi ne enumeration phase ta form pisin banang hodra ba singna form 6 melaga declaration form loi na haujik su pisin ba yari haiba
10: e aduna karam mama tam phawwa
9: claim ama sung objection pere ki manung da belo singda tu pisin ba yare Enumeration phase ta form pisan manang haudra basing mi pai ningai amatalaite ngasi mak belo ga tanabiu electoral roll da mingya huna bagi damak form 6 samadi declaration form lagliba august ki tang mari form gi manung da samitobi pau jenjari ba sip electoral officer manipur
2: august bani imphal da gi pau tabiri Lok Sabha ngasi public examination prevention on unfair means amendment bill lisingani kuntaruk puthok tuna khanakre anob bill asida farikyada aranba tobasing sahi tara phadok piba amadi lupa koti tara phawba fine toba amachung makhoi gi lanthum matpana singba akan baserak sing yauri bill asida raija sing amadi union territory singda first track court sing lingba aranba tobasing ki mathakta sarsi tokhraba matungda thahung ki manungda achumba wael piba haibina singba wapam sing yauri Haujik sanabagi pau ngangbam amukhom badagi.
11: Sama kuntra manga chuba durang kap ki Imphal lek kansi dagi Imphal gi khumalampak men stadium da hukre. Ngasi numidang wairam pung manga dagi hauduna sanaki ba ahan ba group ji gi match da Neroka FC amasung Trau FC api ba matam pau panjil amata chanaduna drochat ki. Mathagi match thasi kuntra da FC Rengdai amasung Indian Navy football team sanagani. Sri Sri Gopal Dev Kangkhutna Sinduna tara chuba let mangchatabam iboyama and punabati memorial league kam knockout kang tournament lisingani kuntruki ngasi sanakhiba match ta SSU na Gopal Dev bu panchil tara manga tarin thoida thoikre. Haiyang kuntra pam kangkhut amasung walida kangkhut sanagani. Glasgow da chathariba Commonwealth Games ta Bharat na sanagi ta kamar ani Lupagi manga, Shenzhen ki ahum puna, takaman tara phangdura nipan subda lairi. Australia na sanagi takaman kuntaret, lupagi tara humdoi amasung Shenzhen ki kun puna, takaman humpu phangduna ahan bada lairi. Boxing ki kilogram nyakhe manga ki kitaguri da, Manipur ki Mandevong Jadumani, ngasi nongyai matung pung tara nithoi, chatpa matam da maha ki Zambia ki lambaga quarter final sanagani, nolini.
2: Adu bida, madu iba pau amukhana. Sama kuntra manga suba Duran Cup ki Imphal Lake ngasi dagi Kumalam Park Main Stadium da Rajyapal Ajay Kumar Bala na hodokre. Education Q ki director L Radhakantana Hari Rajya sida leiriba college sing gi award ba oja sing athuba matamda menchina ba thaurang leire. Malim ki hepatitis numit Manipur da su pak sana pangthuk nakre. Imphal Izila ki saijang chairau sing dagi security force nangasi kujukulai ke amarum phagale. Amishu Lok Sabha Nangasi Public Examination Prevention on Unfair Means Amendment Bill Lisingani Kuntaruk Putoktu Nakhanakre Paulo Jare

0: ꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯒꯨꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
1: यार सच बताऊं अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है इस बार तो लगवा ही देता हूं जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई आप भी लगवा ही दो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in
0: आकाशवाणी इम्फाल हाउसिंग नुमिदांगी पुमा पलतारे
2: आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी ने पाव पचरी ꯆꯥꯃꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥ ꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞꯀꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯂꯦꯛ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯈꯨꯃꯟꯂꯝꯄꯥꯛ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯄꯥꯜ ꯑꯖꯌ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯥꯂꯥꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯤꯔꯕ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯎꯠꯈꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯏꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯆꯤꯐ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯙꯤꯔꯖ ꯁꯦꯠ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯁꯤ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯀꯃꯥꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯣꯐꯤꯁꯦꯜꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯀꯞ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯀꯣꯜꯀꯥꯇꯥ, ꯔꯥꯟꯆꯤ, ꯒꯨꯍꯥꯇꯤ, ꯁꯤꯂꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯈꯨꯃꯟꯂꯝꯄꯥꯛ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯒꯤ 3, 5, 4 ꯑꯃꯁꯨꯡ 19 ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ 1095 ꯁꯨꯕ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞ 2026ꯀꯤ ꯃꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯂꯥꯏꯕ ꯀꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯦꯠꯁ ꯑꯗꯨ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯂꯥꯏꯕ ꯀꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤ 1095 ꯁꯨꯕ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞꯀꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯂꯦꯛ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯈꯨꯃꯟꯂꯝꯄꯥꯛ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ 5:00 ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯗꯤꯒꯤ ꯃꯦꯠꯁꯇ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥ ꯑꯦꯐ ꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯎ ꯑꯦꯐ ꯁꯤ ꯑꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯥꯟꯖꯜ ꯑꯃꯇ ꯆꯟꯅꯗꯅ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯃꯦꯠꯁ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯗ ꯑꯦꯐ ꯁꯤ ꯔꯦꯡꯗꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯅꯦꯚꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯤꯝꯒ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯤꯝ ꯀꯨꯝꯃꯔꯤꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯔꯨꯛ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯔꯤꯂꯪꯀꯥꯟ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯇꯤꯝꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯥꯔ ꯄꯤ ꯑꯦꯐ ꯄꯤ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯒꯤ ꯍꯛꯆꯤꯟꯕ ꯀꯥꯗꯔ ꯑꯃ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯂꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯔꯦ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯁꯨꯒꯅꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯅꯨꯡꯉꯨꯜ ꯂꯝꯈꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯣꯞ ꯁꯣꯔꯦꯄꯥꯒꯤ ꯀꯥꯗꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯆꯠꯄ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯆꯦꯛ ꯄꯣꯏꯟꯇꯒꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯖꯤ ꯑꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯗꯒꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯈꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯍꯣꯟꯗꯥ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯂꯦ ꯂꯣꯛꯁꯚꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯟ ꯑꯟꯐꯤꯌꯔ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯕꯤꯜ 2026 ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡ ꯆꯍꯤ 10 ꯐꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 10 ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝꯃꯠꯄꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯥꯏꯖ꯭ꯌꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯂꯤꯡꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯥ 3 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯤꯚꯥꯟꯁꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯄꯦꯟꯁꯟꯁꯀꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯎꯠꯂꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯀꯅꯥ ꯃꯇꯅ ꯃꯟꯇꯤꯛꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯦꯠꯁꯤꯜꯍꯜꯂꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯦꯂꯥꯌꯦꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯦꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯐꯝ ꯃꯪꯒꯜ ꯃꯤꯂꯟ ꯉꯁꯤ ꯁꯪꯁꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯍꯥ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯖꯅꯥꯥꯊ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯦꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤꯒꯤ ꯃꯅꯣꯖ ꯇꯤꯋꯥꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯦꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯈꯤ ꯏꯌꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯖꯤ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯃꯣꯗꯦꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯟꯖꯥꯕꯇꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯕꯥꯛ 17 ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯝ ꯃꯣꯍꯟ ꯅꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ 1,50,000 ꯑꯇꯩ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯑꯃ꯭ꯔꯤꯠꯁꯔꯗꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯟꯖꯥꯕꯇꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ Air India ki passenger singna mapale bagta sa tingai ki mangoina na Diji jatra da register toba tangai fate. Rashtrapati Draupadi Murmu na Bharat ki Sarmila Dhankar na Commonwealth Games lesingani kuntarukta nupi ki Swordboot FPP 7 da sanagita kaman laurukpada nungai pa phongdokli. Social media da thagatpa warul amada Rashtrapati na hai Para Athletic da Bharat ki oina ahanba sanagita kaman laubangam lakpada Chanuri Singh asigita mag leibak asina chauktuk chadi. Uparashtrapati CP Radhakrishnan nasu Sarmila Dhankar ki mafamda nungai pa phongdokli. India met Bibak Nahari, Lakliba Numit Karani, Asida Manipu Yauna, Awang Nungpo Raijagi Mapam Ayambada Akanba Nung Churabayai. Bibak Asinahai, Nungchu Bengal, Sikkim, Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Maharashtra, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Kerala, Mahe, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Mapam Karada, Ngasi Nungchu Gani, Pauklu Jare.

0: ꯍꯥꯟꯖꯔꯤꯕ ꯒꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯤꯠ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ. ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 10:30 ꯇꯥꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ. ꯍꯌꯦꯡ ꯏꯪꯉꯦꯟꯒꯤ ꯊꯥꯅꯤꯜ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 9 ꯁꯀꯥꯞꯇ 1994 ꯌꯨꯝꯖꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 5:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯖꯒꯅꯤ. ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪꯅꯤꯖꯔꯤ. ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ. ꯖꯦ ꯍꯤꯟ.
1: रात और बारिश दोनों में एक अजीब सी बात होती है ना? दिन की भीड़ में जो एहसास कहीं खो जाते हैं वो रात की खामोशी और बारिश की बूंदों के साथ फिर लौट आते हैं. हर बूंद जैसे कोई अधूरी कहानी कहती है, हर हवा का झोंका किसी की याद लेकर गुजरता है और ये भीगी रात दिल को इतना करीब से छू जाती है कि शब्द भी खामोश हो जाते हैं.

0: प्रोफेसर प्यारेलाल का गीत आपने सुना, राजेंद्र किशन जी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और आवाज, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। सुन रहे हैं आप हर श्रृंगार सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

0: 10:42 और ठीक 32 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है हर श्रृंगार और देविका है आपके साथ। और जी हाँ, बात बारिश की हो रही थी। श्रोताओं, सोचिए, अजीब बात है ना, बारिश में भीगने से कपड़े तो सूख जाते हैं लेकिन यादें कभी नहीं सूखती, और हर सावन के साथ वो फिर से भीग जाती हैं। अगर आज इस बारिश में आपके दिल में भी किसी के नाम की दस्तक दी है तो उसे रोकिए मत। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होने के लिए नहीं, महसूस होने के लिए होती हैं। बारिश हमें यही सिखाती है कि प्यार का सबसे खूबसूरत एहसास हमेशा साथ होना नहीं, किसी की याद में भी मुस्कुरा पाना है।
1: सावन की रातों में ऐसा भी होता है, राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।

यकीनन सावन की रातों में ऐसा भी होता है। प्रेम पत्र फिल्म का गीत आपने सुना, गुलजार साहब के बोल, सलील चौधरी का संगीत और आवाज, लता मंगेशकर और तलत महमूद साहब की। श्रोताओं, बारिश की बूंदों में जब चांद की रोशनी उतरती है, लगता है जैसे मोहब्बत ने आसमान से जमीन तक का सफर तय किया है। चांद आज भी वही है, बस फर्क इतना है कि पहले उसे तुम्हारे साथ देखा था और आज तुम्हारी यादों के साथ देख रहे हैं। बारिश की हर बूंद पूछती है तुम्हारा हाल और चांद हर रात तुम्हारा पता बताने की कोशिश करता है। कुछ इश्क बारिश जैसे होते हैं, छूकर गुजर जाते हैं, और कुछ चांद जैसे दूर रहकर भी हर साथ, बिल्कुल हर रात भी साथ निभा जाते हैं।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: सिंगर से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर और वो चांद मुस्काया आखिरी दो फिल्म से गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी साहब के बोल, मदन मोहन का संगीत और आवाज मन्ना डे और लता मंगेशकर की। और हर श्रृंगार का आखिरी गीत हम लेकर आए हैं फिल्म कल आज और कल से।

सुनो आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8% जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसला

मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य. कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: नमस्कार. थैंक यू.
1: और सबसे पहले नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड मार्जिनली डाउन. सेंसेक्स ड्रॉप्स 70 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 23,985. India's industrial output grows by 7.3% in June this year, and most Asian stock market indices end in the negative territory. South Korea's Kospi index plummets nearly 11%.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली गिरावट. सेंसेक्स में 70 अंक की सुस्ती और निफ्टी 23,985 पर बंद हुआ. भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर जून महीने में 7.3% की बढ़त और अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में सबसे ज्यादा लगभग 11% का नुकसान.

0: Patra. And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ. घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 70 अंक नीचे आकर 76,766 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 11 अंक फिसलकर 23,985 पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में आज मिला जुला रुख देखने को मिला. मिड कैप सूचकांक में लगभग 0.1% की बढ़त हुई, जबकि स्मॉल कैप में 0.2% की सुस्ती आई. इससे पहले एशियाई शेयर बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के कारण बाजार आज सपाट स्तर पर खुले. दोनों प्रमुख सूचकांकों में उतार चढ़ाव तो होता रहा और अंतर्दिवसीय सत्र के दौरान वे एक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे.
0: Benchmark domestic equity indices ended marginally lower today. Sensex dipped by 70 points to close at 76,766. Nifty dropped by 11 points to settle at 23,985. The broader market at the NSE displayed a mixed trend. The mid-cap 100 index rose nearly 0.1%, while the small-cap 100 index fell over 0.2%. Earlier, the markets opened on a flat note, tracking weak cues from the Asian markets. Both the benchmark indices swung between gains and losses and traded within a narrow range during the intraday session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों में आज बढ़त दर्ज हुई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टीसीएस लगभग 4.5% ऊपर आ गया. एटर्नल के शेयर 4% चढ़ गए और टेक महिंद्रा में लगभग 3.9% की बढ़त दर्ज हुई. दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर लगभग 7% लुढ़क गए. बीएल में 4.4% की गिरावट आई और एनटीपीसी के शेयर लगभग 2% नीचे आ गए.
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 15 out of the 26 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, capital goods dropped 2.4%, power dipped almost 2.4%, and utilities fell more than 1.7%. In contrast, focused IT advanced over 3.4%, IT rose 3%, and realty gained 2.2%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,629 companies declined, 1,626 companies advanced, and 169 companies remain unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 4 पैसे मजबूत हुआ और 1 अमेरिकी डॉलर की तुलना में 95.85 रुपए पर बंद हुआ. एकेबी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है.
2: नमस्कार.
1: आज के बाजार पे अगर नजर डालते हैं तो बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिला. एक मामूली गिरावट के साथ बाजार

0: बंद हुए हैं, लेकिन एशियाई बाजारों की तरफ देखें तो बड़ा गहरा असर हमें देखने को मिला तमाम चीजों का। तो इसमें मुनाफा वसूली का कितना योगदान रहा या फिर जो जियो पोलिटिकल स्थितियां हैं उनका योगदान ज्यादा था या कुछ अन्य कारण रहे?
1: देखिए, अगर वो भारत की अगर बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि जो भारत की जो आज की जो स्टॉक मार्केट में जो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो अगर आप पहले सत्र दो तीन सत्र में देखें उसी आज के में तो उनमें काफ़ी पॉजिटिव था। पर मुझे असेसमेंट मेरा ये है कि जो एशियन मार्केट में पर्टिकुलरली जो कोरियन मार्केट में जो चिप मेकर्स के साथ जो हंगामा जो हुआ, चिप मेकर्स के ऊपर जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई है लोगों ने एशियन मार्केट्स में ज़्यादातर, उसका प्रभाव थोड़ा बहुत हमारे मार्केट में भी आया है। और उसी लिए जो गेंस फर्स्ट हाफ में थी वो गेंस न्यूट्रलाइज होकर थोड़ी बहुत मार्जिनल लॉस में 70 पॉइंट जैसे आपने कहा उन सेंसेक्स में हुआ है। पर देखने वाली बात यह है कि कल के जो रिकवरी हुई, स्ट्रॉन्ग रिकवरी, और आज के जो तेल की जो दाम गिरने के बाद भी स्टॉक मार्केट में जो एक स्टेबिलिटी जो आई है पर्टिकुलरली इन द आईटी सेक्टर में वो नोटिसेबल है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो इंटरनल जो एक जो पुल है इंटरनल मार्केट का वो ग्लोबल डेवलपमेंट को ऊपर ओवरकम करके वो दिखा रहा है।
0: पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो लगातार पाँच दिन तक गिरावट आई, कल एक बढ़िया दिन देखने को मिला, कारोबार के नज़रिए से खरीदारी काफ़ी हुई, लेकिन आज बड़ा नपा तुला रवैया देखने का मिला निवेशकों का।
1: उसका कारण ये है कि जो कल की जो रिकवरी थी बहुत ही शार्प रिकवरी थी और उसका कारण भी बहुत ही क्लियर था कि उसकी कल जो है वो तेलों के दाम गिरने लगे क्योंकि ट्रंप साहब ने ऐलान किया था फ्राइडे को कि वो शायद ये जो युद्ध को और भी आगे ज़्यादा एस्केलेशन नहीं करेंगे, शायद किस तरह से एस्केलेट करेंगे, कैसे करेंगे, वो मार्केट का जो सिग्नल जो था वो पॉजिटिव लगा मार्केट को, तो इसीलिए सारी काफ़ी गेंस आई। और उसके साथ का तेलों के दाम $94 था वो करीबन आकर 84 में आ गया, आज भी वही चीज़ हुआ, तेलों के दाम नीचे आ रहे हैं, रुपया इसीलिए थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन हो रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो आज की जो स्टॉक मार्केट जो है वो सिर्फ वो जो साउथ कोरिया में जो और एशियन मार्केट्स में जो चिप मेकर्स की के लेकर जो हंगामा जो हो रहा है उसके लिए थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, बाकी कोई कारण नहीं है।
2: There are two aspects to my question. One is information technology stocks went up by 3.32% to the Nifty IT index, and we saw the shares rising between 4.5 and 3.9%, short covering in this sector. And you know, these tech stocks, their earnings, the revenue guidance seems to be quite good, including the net profitability, and their earnings are in foreign exchange as well. And there's also the question of the rupee to the dollar, and the dollar index is at 101.561. And what we are seeing right now is also action by the central bank at the same time, because they are saying that the inflows of FCNR, foreign currency non-resident accounts, have actually gone up by $32 billion, because you know the interest on these fixed term deposits, which is for 1 to 5 years, is between 3 and 7.4%. So it appears that the foreign exchange earnings of IT companies is a factor in the short covering that we're seeing right now, while at the same time you're also seeing that the rupee is strengthening, and the government is also saying that the central bank is saying that you also have healthy foreign exchange reserves. How do you see pair the rupee to the dollar while at the same time also look at the IT index?
1: Well, what is happening right now is at one level you are seeing that India's external sector is getting the benefit of some of the policy measures that were taken a few weeks ago, which is why the FCNRB deposits are expected to flow in. Many of the private sector banks, even the public sector banks, are reporting decent amount of flows coming in. So as a result, India's balance of payment deficit, which was earlier expected or feared to be much larger, which will not be that much. So this is having a positive impact on the rupee, because this essentially means that India has the ability and the wherewithal and the muscle to deal with its import liabilities without much domestic problem. That is one level. And the other level is that you refer to the IT sector's performance. The IT sector's performance, today's stock market, has done very well. They've almost gone up by 3% or so. Now, this is the reason, is because the India's IT sector is dependent on earnings through their services exports and not so much on the AI boom. I mean, what we are seeing globally right now is a kind of almost like a bloodbath. There was a circuit breaker was triggered in the South Korean market.
2: There's a sell-off in those tech shares.
1: No, there was a circuit breaker, which means that if it is crosses 10%, that the trading comes to a halt. So this is what happened, and this was purely because the over exuberance or overconfidence in the chip industry's ability to come in with greater returns, that has been dashed, and the demand for chips, particularly of the Chinese companies' launch of the new product, has also taken a bit of a hit. Whereas in the Indian IT sector has not been influenced by the chip and the AI thing. They are still the old play of services and IT services play, with the Global Capability Center play, which is why the Indian IT sector is still maintaining growth, whereas the globally, there is a bit of a mayhem there.
2: There's always a question of valuation. So now you have the IT index showing a high valuation. The RBI is saying that the rupee is currently undervalued, evidenced by the FCNR deposits as well. While at the same time, the Asian markets, the AI related boom is showing that those shares are actually overvalued. So clearly, this is a valuation story going on right now with IT and how the dollar is performing.
1: To a great extent, yes. Don't underestimate also the role that the crude oil prices have played here. And the crude oil prices have also softened considerably in the last couple of days. So that has also contributed to India's external sector scenario or the outlook.
2: Was there a profit booking in the capital goods sector, which fell by 2.4%? Because there is a leading company in the capital goods sector, which has given good numbers in terms of revenue, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, margin, order book and net profitability.
1: Whenever a company, in this case, the company that you are referring to, if they come up with decent results, profit booking is par for the course. So I won't be ruling that out.
0: AKB, अगर इस पूरे महीने हम जुलाई के महीने में नजर डालें तो एक सेक्टर रोटेशन हमें नजर आया है, चाहे FIIs के नजरिए देखें या DIIs के नजरिए देखें, एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिल रहा है. और ऐसे समय जो मॉनसून हमारे यहाँ पर अभी मॉनसून का सीजन है और तमाम चीजें हो रही हैं, तो आपको लगता है कि ये जो चेंज आ रहा है ये निवेश की दृष्टि से सही है या इसका लोगों को फायदा होगा जो मुनाफा वसूली करना चाहते हैं?
1: देखिए, बहुत सारे IPOs आने वाले हैं, तो जो आप बिकवाली की बात कर रहे हैं आई पी ओ के लिए भी हो सकता है, नंबर वन. नंबर टू, जो मानसून की जो बात आपने की, मानसून की जो हमारी जो डेफिसिट है, वो हालांकि वो 40% डेफिसिट अब नहीं रही है, अब घटकर 14% हो गई थी, फिर अब बढ़कर 18% हो गई है. तो मानसून में जो एग्रीकल्चरल की जो एक इम्पैक्ट होने वाली थी, वो अभी भी जो लगता है कि थोड़ी बहुत सीमित है. और तीसरी बात ये है कि जो हमारी जो आईटी सेक्टर जो है, उसमें जो एक जोश दिख रहा है, वो FIIs को अच्छा लग रहा है. इसीलिए अगर आप जुलाई का पूरा अगर ट्रेंड देखेंगे, FIIs
0: वही पर आ रहा था,
1: उतनी तरह पुल आउट नहीं किया उन्होंने
0: जी.
1: उन्होंने इस मार्केट में वो रहने का तय किया. हालांकि उनको ये मालूम है कि फेड में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, और शायद यही मौका है कुछ पैसे बनाने का, क्या करने का. तो ये जो मैं मतलब ये बोलने का मेरा तात्पर्य यही था कि ये एक टेम्पोररी चीज़ है, क्योंकि ज्यों ही आप देखेंगे फेड अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, कभी FIS का रुख शायद बदल सकता है तो कितने दिन तक ये टेंडेंसी ये सेंटिमेंट बरकरार रहे उसमें भी एक

0: टेंशन ना।
1: करंट सिनेरियो की अगर हम बात करते तो फेड का जो जो भी रिजल्ट होगा वो कितना इंपैक्टफुल आपको लगता है?
0: इंपैक्टफुल तो जरूर होगा हमारे स्टॉक मार्केट में, एफआई से पुल आउट जरूर होगा
1: जी।
0: और स्टॉक मार्केट को उसको उसके जो जो डेवलपमेंट जो है इम्पैक्ट है उसको संभालना पड़ेगा
1: जी। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने आज चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजे जारी किए हैं। कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 9.8% से ज्यादा बढ़कर 17,529 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं वार्षिक आधार पर कंपनी का सकल लाभ 3% घटकर 2,673 करोड़ रुपए रह गया है।
2: AKB, my question is on the FMCG sector. We're seeing that the rains are back in the month of July after deficient rains in the month of June. We are seeing in agriculture the sowing of kharif crops, paddy, pulses, oil seeds, cotton and sugarcane. So when is the josh going to come back in the FMCG sector, sir?
0: It's too early, number one, because the demand outlook is still very muted. And if rains are so far have held up, but it remains to be seen that how long these rains outlook continues to give you confidence over agricultural output remaining what they were originally projected. So FMCG sector is very, very sensitive to how the rural economy fares. So the rural economy does not do well. But if the manner in which it is happening so far, I think rural economy will not be largely affected. So to that extent, FMCG sector's outlook is not that bad. Josh may not come back, but the outlook is not that bad.
2: In more news, Larsen & Toubro Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The company's consolidated revenue from operations rose nearly 6.7% year-on-year to 67,942 crore rupees. The firm's net profit increased by around 14% to 4,123 crore rupees on an annual basis. AKB, we earlier discussed that, you know, capital goods sector actually fell by 2.4% in trading today, the Nifty Index. Is it because engineering goods to some extent are being hit by all these protectionism by the US market in terms of its tariff policy? What is going to be the likely outlook for capital goods? Because as far as our net exports are concerned, one of the chief contributors is our exports of capital goods.
0: No, I am not at all that defensive on the capital goods sector, whatever may have happened in the stock market today. As long as the infrastructure sector is doing well, as long as the construction sector, and the sign of construction sector doing well is the Larsen & Toubro results today, is doing well, I don't see the capital goods sector faring poorly. So if you are betting on the capital goods sector, then I think you are betting the right sector.
1: आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इस संबंध में आंकड़े जारी किए हैं। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि जून महीने में सभी चार बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। बिजली और गैस आपूर्ति में 10.6% तथा विनिर्माण में 7.8% की बढ़त हुई है। जलापूर्ति, सीवरेज और कचरा प्रबंधन में 6.1% की तेजी आई। वहीं खनन और उत्खनन क्षेत्र में 1% की मामूली बढ़ोतरी हुई है। AKB, ये जो आंकड़े आए हैं IIP के हमारे सामने हैं, किस तरह से इन्हें आप देखते हैं, खासतौर पे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भारत की जो स्टैंडिंग पोजीशन है राइट नाउ, उसके आधार पर आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इसमें?
0: देखिए, इसमें अगर आप सेक्टर को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हमारी इकोनॉमी की जो स्थिति है। जून का महीने का नंबर है ये
1: जी।
0: और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई देखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है 10%। और अगर आप हमारी ट्रांसमिशन सेक्टर की परफॉर्मेंस, पावर सेक्टर की परफॉर्मेंस जून के महीने में देखेंगे कि डिमांड ज़्यादा बढ़ने के बाद भी बावजूद जो जिस तरह से पावर सप्लाई, जनरेशन और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन एकदम इंटैक्ट रही, उसी का प्रतिफलन आप देख रहे हैं कि 10.6% का ग्रोथ आपका इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो 7.8% ग्रोथ जो हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर IIP का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है
1: जी।
0: मुझे लग रहा है कि ये जून के महीने में जो बरसात के आने के पहले जो एक हम एक सर्ज देखते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देख रहे हैं और बाकी जो माइनिंग एंड क्वेरिंग में है वो उसमें जरा मेरे ख्याल से शायद जून के महीने में लास्ट ईयर बहुत हाई लेवल बेस था उसी का बेस इफेक्ट दिख रहा है पर ऑन द होल जो परफॉर्मेंस आईआईपी का जो परफॉर्मेंस है वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी आशाजनक
1: एकेबी इस पे पावर सेक्टर पे अगर हम नज़र डालें तो शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चढ़ते हुए ग्राफ में नहीं देखी गई है लास्ट कुछ मंथ की हम बात करें कुछ दिन की बात करें इसके पीछे क्या वजह हो सकती है
0: जो ये जो पावर की जो आईआईपी में जो आप देख रहे हैं वो पावर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में देख रहे हैं
1: जी।
0: पर मैं समझता हूं कि जो पावर सेक्टर के स्टॉक मार्केट में जो है ज़्यादातर कंपनियां वो पावर इक्विपमेंट और पावर सप्लाई में ज़्यादा वो है तो उनका जो नज़रिया या उनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डिफरेंट है और ये जो है सप्लाई और प्रोडक्शन के ऊपर है।
2: जस्ट माई क्वेश्चन ऑन मैन्युफैक्चरिंग वी हैव द फिगर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई PMI, which is at 53.9, and June was slightly higher, 54.2. But right now, the government of India is also giving a massive push to manufacturing. For instance, we have the news on the toy industry. The Commerce and Industry Ministry has said that we are pushing for a 5% share of the global market when it comes to toys. Now, it's one of many manufactured items. How do you see this push towards China Plus?
0: Well, I think that the China Plus strategy has not really paid us off in a big way. Where it has paid off is only in one sector, which is in the mobile phone manufacturing sector through the Apple's mobile phone manufacturing through Tata Electronics and even the Chinese, the Taiwanese companies perform factories here. So I think the manufacturing sector's performance is largely limited to a few sectors and it is not widespread and it is very necessary that the manufacturing sector growth not just shows up with a 7.8% growth, it should be in double digits. So this is that is only will give you a kind of employment growth that this country needs.
1: अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 10.8% नीचे आ गया क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच में निवेशकों ने काफी टेक शेयर बेचे. इससे पहले इस सूचकांक में 8% की अधिक गिरावट आई थी जिसके कारण कोरियाई एक्सचेंज को सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ा और 20 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी. ये इस साल सातवीं बार था जब एक्सचेंज ने सर्किट ब्रेकर लगाया. ताइवान का ताएक 4.6% से ज्यादा टूट गया. जापान का निक्केई 225 3.9% से अधिक नीचे आ गया. चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक लगभग 1.2% लुढ़क गया. हालांकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ. वहीं दूसरी तरफ हांगकांग का हैंगसिंग इंडेक्स आज 0.4% के लाभ में रहा. एकेबी आज की बड़ी बात यह रही कि कोरियाई एक्सचेंज को सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ा और 20 मिनट की ट्रेडिंग रोकनी पड़ी. लेकिन जिस तरह से गिरावट हमने देखी ऑलमोस्ट 11% के आसपास गिरावट एक बड़ा नंबर है. बहुत समय बाद यह नंबर देखने को मिला है तो इसे मुनाफा वसूली की वजह माना जा सकता या फिर हम ये कह सकते हैं कि टेक्स सेक्टर में अब कोई बड़ा करेक्शन आ चुका है या आने वाला है.
0: ये मुनाफा वसूली नहीं है. ये जो एक्सुबेरेंस जो था ओवर कॉन्फिडेंस जो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड इन्वेस्टमेंट पे ऊपर स्पेशली जो चिप मेकिंग की जो डिमांड जो लोग कह रहे थे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है डेटा सेंटर्स को बनाना पड़ेगा और चिप की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ेगी. पिछले कई दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डिमांड की जो प्रोजेक्शन जो है उनकी एक बहुत बड़ी रिवीजन हुई है. उस रिवीजन से जो जिस डिमांड के तरीके स्टॉक मार्केट में चिप मेकर की जो प्राइसेस बढ़ रही थी उसमें एक धक्का आया है और मैं समझता हूँ कि ये एक रियलिटी चेक है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड स्टॉक्स और चिप मेकिंग स्टॉक्स के ऊपर. और द कोरियन मार्केट जो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर निर्भरशील है उनकी मार्केट उसको ये पहला धक्का मिला है.
2: मूविंग ऑन टू द क्रूड ऑयल मार्केट. ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल टुडे. ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 1.7% डाउन एट $86.85 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड. West Texas Intermediate WTI crude was trading over 1.4% down at $81.41 per barrel when reports last came in. AKB, all the news is centered around the Strait of Hormuz with 20% of oil and gas flows through. But there is also the Red Sea. There is also action in the Black Sea. How do you see oil prices in the short to medium term, especially with India's reliance on imports?
0: Well, it's very difficult to estimate or project what kind of trajectory the Brent crude oil prices or the West Texas crude oil prices will take, for the simple reason that the global situation, particularly in West Asia, is so volatile, so uncertain. I mean, if the Brent crude oil prices came down a bit, that is because Mr. Trump decided not to escalate his offensive against Iran. So as a result of which, Brent crude oil prices come down. So as long as these things will continue, I think the crude oil prices will keep going up and down. And for us, for the Indian economy, it is necessary, and it has already done that, diversifying its sources, diversifying its supplies. And that's the way it will go on.
2: Let's move on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1% down at 1,42,380 rupees per 10 grams, while silver was trading 2% down at 2,17,340 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1% गिरकर 141,681 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था और सितंबर अनुबंध वाली चांदी 2.1% की गिरावट के साथ 216,420 रुपए पर थी। एकेबी कमोडिटीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा परफॉर्मेंस इस समय का उनका चल रहा है और जो भी जिस तरह की स्थितियां उनका कैसा असर उस पर?
0: देखिए, इस वक्त जो फेस्टिवल सीजन एक महीने बाद शुरू हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो नरमी दिख रही है वो नरमी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। डिमांड बढ़ने वाली है और वो डिमांड जब फेस्टिवल सीजन में डिमांड बढ़ेगी तो मैं समझता हूँ कि इनके जो जो जो येलो मेटल्स जो हैं इनकी भी डिमांड बढ़ेगी और उनके दाम भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट आएगी, इंक्रीज आएगी।
1: एक भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end marginally down. Sensex drops 70 points. Nifty settles at 23,985. India's industrial output grows by 7.3% in June this year. And most Asian stock market indices end in the negative territory. South Korea's Kospi index plummets nearly 11%. And that's it in this edition of Market Mantra for now.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। भाजपा की बांसुरी स्वराज ने विधेयक को परीक्षा माफिया पर प्रभावी कार्रवाई की दिशा में अहम कदम बताया। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने साइबर सुरक्षा में सेंध लगने की मीडिया रिपोर्टों को गलत और अपुष्ट बताते हुए खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संबंधित एजेंसियों ने इस मामले की गहन जांच की है। मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर साझा किया जा रहा अधिकांश डेटा गोपनीय नहीं है। कुछ दस्तावेज वर्ष 2020 से 2022 के दौरान हुई पुराने डेटा लीक से जुड़े हैं। मंत्रालय के अनुसार कुछ लोगों ने पुराने दस्तावेजों में फेरबदल कर उन्हें नया और गोपनीय बताने की कोशिश की है। जांच में यह भी सामने आया कि ये दस्तावेज पुराने हैं, इनमें कई बार संशोधन हो चुके हैं और इनका वर्तमान संचालन से कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। अनुभवी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The Lok Sabha took up the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment 2026 bill incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special task force fast courts for the court day-to-day trial. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, said the new legislation reflects the government's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country.
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, A, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
1: Participating in the discussion, Congress MP KC Venugopal stressed the need for wider educational reforms and comprehensive changes in the examination system. Several other members, including Basuri Swaraj, Tejasvi Surya of the BJP, Priyanka Gandhi Vadra and Gaurav Gogoi of Congress, Abhishek Banerjee of TMC, NCP, SP, MP Supriya Sule, Dr. Shrikant Shinde of Shiva Sena and Akhilesh Yadav and Dimple Yadav of Samajwadi Party took part in the debate. Other members, including BJP's Anurag Thakur and Shashank Mani, Congress MP KC Venugopal, S. Venkatesan of CPIM, Gurumurthy Maddila of YSRCP, RJD's Abhay Kumar Sinha, IUML MP E.T. Mohammed Bashir, JMM's Vijay Kumar Hansdak, CPI MP K. Subbarayan, JDS MP M. Mailesh Babu, AIMIM's Asaduddin Owaisi and Harsimrat Kaur Badal of the SAD were among those who participated in the discussion. However, the discussion remained inconclusive. Later, the presiding officer, Sandhya Ray, adjourned the house to meet at 11 a.m. today. The Supreme Court yesterday observed that recent nationwide protest over the NEET paper leak warranted a thorough, fair and impartial investigation into the allegations of injuries to the students and police officials. The Apex Court directed the release of student protesters under the age of 18 who were arrested during the demonstrations and have no previous criminal records. The court asked the authorities to preserve electronic and digital evidence relating to the protests. The three-judge bench headed by Chief Justice Suryakant was hearing a batch of petitions alleging excessive use of police force during the demonstrations. State governments of Maharashtra, Bihar and Assam have decided to withdraw cases and other legal proceedings initiated against students who recently participated in protests on the NEET paper leak issue. The move is in line with the center's guarantee that no legal action will be taken against students who participated in the protests. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries at his residence earlier yesterday. The Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. At the Commonwealth Games, India's Srihari Nataraj qualified for the semi-final of the men's 100 meters backstroke swimming competition at Glasgow in Scotland yesterday. Para swimmers RVVK Buddhigina and Ali Imam also qualified for the men's 50 meter freestyle S13 final. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। नमस्कार जी। हाँ, दिन की हलचल थम चुकी है। देखिए कहीं आसमान की तरफ देखिए जरा, कहीं चांद रात को आसमान से झांक तो नहीं रहा। तारे खामोशी से अपनी कहानी तो नहीं कह रहे। हवाओं में घुली है एक मीठी सी खुशबू। जी हाँ, आइए कुछ लम्हों के लिए दुनिया की भागदौड़ को हम और आप यहीं छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अपने दिल की धड़कनों को थाम कर पुरानी यादों, मोहब्बत के कहे अनकहे सिलसिलों और एहसासों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जी हाँ, प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत गीत। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं ये गीत।

कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि वो तो याद बनकर धड़कन में बस जाते हैं, जैसे चांद का बदलना और मौसम का बदलना, लेकिन एहसास का ना बदलना, क्योंकि ये प्यार वाले एहसास कभी नहीं बदलते। किसी की मुस्कान, उसकी बातें, उसके साथ बिताए हुए पल दिल की किताब में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। शायद इसीलिए कुछ लोग दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहते हैं। तो इस खामोश चांदनी से सजी रात में चलिए हम और आप सुनते हैं ये नगमा।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कुछ बातें होठों तक आकर भी कहीं नहीं जाती, इसीलिए दिल उन अल्फाज को कहीं ना कहीं सहारा देता है अल्फाजों के माध्यम से, या फिर गीतों, गजलों या शायरी के माध्यम से। एक खत में सिर्फ स्याही नहीं होती, बल्कि उसमें होता है इंतज़ार, धड़कने, ढेर सारे अनकहे जज्बात लिखे होते हैं उसमें। और जब कोई रात ऐसी हो जहाँ पर चांदनी रात हो या खामोश रात हो, तब ऐसे में दिल के पन्ने जब हम पलटने लगते हैं तो हर लफ्ज़ मोहब्बत की खुशबू से महक उठता है। अगर आपने भी कभी किसी के लिए अपने दिल की बात खत में लिखी है तो ये नगमा ज़रूर आपके दिल को छू जाएगा। चलिए सुनते हैं ये गीत।

निशिगंधा सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। सलाम तेरी मुरव्वत को मेहरबानी को, सलाम तेरी मुरव्वत को मेहरबानी को, मिला एक और नया सिलसिला कहानी को, सलाम तेरी मुरव्वत को मेहरबानी को।

0: गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवा

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टकर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय लटखट रंगीले सांवरिया आके सीधी लगी दिल पे ज

0: गोरी हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट, पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना, हम मीठे बहना, तोरे नैना, हाय हाय मीठे बहना।

शहर के साथ चले रोशनी के साथ चले, शहर के साथ चले रोशनी के साथ चले, तमाम उम्र किसी अजनबी के साथ चले। हम ही को मुड़ के न देखा, हम ही से कुछ न कहा, इस एहतियात से हम जिंदगी के साथ चले। तुम्हारे शहर में अनजान सा मुसाफिर था, तुम्हारे शहर में जिस आदमी के साथ चले, शहर के साथ चले रोशनी के साथ चले, तमाम उम्र किसी अजनबी के साथ चले।

0: अगर बात मोहब्बत की जाए तो हमेशा अल्फाज से शुरू नहीं होती, कभी कभी सिर्फ दो नजरें टकरा जाती हैं और दिल अपनी कहानी खुद लिखने लगता है। और ऐसे में जब किसी की आंखों का ख्याल आ जाए तो चांदनी रात में भी दिल मुस्कुराने लगता है और तारे भी कहीं ना कहीं हसीन लगने लगते हैं। ये उन चंचल निगाहों में एक ऐसा जादू होता है जो पल भर की मुलाकात को उम्र भर की याद बना देता है।
1: लागा गोरी गुजरिया से

0: इसलिए कि दुनिया से रस्में वफा मिट न जाए।
1: इस गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2011 के पुराने भर्ती नियम अब प्रभावी नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ताइपे ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के रौनक चौहान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। विश्व रैंकिंग में 66वें स्थान पर काबिज रौनक ने क्वालिफाइंग मुकाबलों में 2 जीतें दर्ज की। पहले मैच में उन्होंने कनाडा के जोशुआ गुएन को 21-15, 21-11 से हराया। इसके बाद रौनक ने ताइपे के कुओ कुआन लिन को 24-22, 21-10 से मात देकर BWF सुपर 300 टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया। दूसरी ओर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाज प्रिया घंघास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। प्रिया ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्कॉटलैंड की नियाम मिशेल को 4-1 के अंकों से हराया। इस जीत के साथ उन्होंने भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब टूट रहा है मेरी हस्ती का तसव्वुर, अब टूट रहा है मेरी हस्ती का तसव्वुर, इस वक्त मुझे तुझसे सरोकार बहुत है, दुनिया मेरे जख्मों की तलबगार बहुत है। पानी से उलझते हुए इंसान का ये शोर, उस पार भी होगा मगर इस पार बहुत है। अब दिल की तरफ दर्द की यलगार बहुत है, दुनिया मेरे जख्मों की तलबगार बहुत है।

अगर यूं ही ये दिल सताता रहेगा, अगर यूं ही ये दिल सताता रहेगा तो एक दिन मेरा जी ही जाता रहेगा। मैं जाता हूँ दिल को तेरे पास छोड़े, मेरी याद तुझको दिलाता रहेगा। मैं जाता हूँ दिल को तेरे पास छोड़े, मेरी याद तुझको दिलाता रहेगा। अगर यूं ही दिल ये सताता रहेगा तो एक दिन मेरा जी ही जाता रहेगा।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और बहुत ही खूबसूरत गीत और नगमे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अगला जो गीत है दोस्तों वो बहुत ही खूबसूरत गीत है। कभी ना कभी दिल किसी एक ऐसे इंसान के करीब बहुत ज़्यादा होता है जिसके साथ रहकर जीवन की सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। वो प्रेम है, सम्मान है, और वो एक ठंडक है जो हर गर्मी से राहत देती है। तो चलिए सुनते हैं दादी माँ फिल्म का ये गीत, और बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों। तो आपको बता दें कि फिल्म है दादी माँ, आवाजें हैं मन्ना डे साहब और महेंद्र कपूर साहब की।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कहते हैं कि दिल की सबसे सच्ची बातें अल्फाज नहीं, लफ्ज नहीं, आंखें कहती हैं। कभी एक नज़र जब मुस्कुरा उठती है तो कभी वही नज़र दिल के सभी राज भी पढ़ लेती है। ऐसा लगता है जैसे आंखें आंखों की तलाशी ले रही है, हर धड़कन में एक ही नाम शायद ढूंढ रही है। तो अगर आपकी निगाहें भी किसी एक ऐसे चेहरे पर ठहर जाती हैं तो समझ लीजिए कि मोहब्बत खामोशी से आप पर अपना असर दिखा रही है। तो इश्क की सबसे खूबसूरत जुबान आंखें ही हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर सुनते हैं आंखों की तलाशी पर एक ऐसा ही गीत। फिल्म है दिल और मोहब्बत, आवाज़ है महेंद्र कपूर साहब की।

फिर वही चांद वही रात कहाँ से लाऊं, फिर वही चांद वही रात कहाँ से लाऊं, उससे दोबारा मुलाकात कहाँ से लाऊं। हर घड़ी जागता रहता है दुखों का सूरज, नींद आती है मगर रात कहाँ से लाऊं, फिर वही चांद वही रात कहाँ से लाऊं, उससे दोबारा मुलाकात कहाँ से लाऊं।

कभी कभी किसी से शिकायत नहीं होती, दुनिया को कुछ बताना नहीं होता, सिर्फ दिल को एक पनाह चाहिए होती है। जहाँ शिकायतें नहीं होती, जहाँ सिर्फ अपनापन होता है, ऐसे एक रिश्ते की लोगों को दरकार होती है। जहाँ चांद अपनी चांदनी को खामोशी से अपनी बाहों में समेट लेता है, वैसे ही हर दिल ये चाहता है कि कोई अपना हो जो हमारे दिल की बातों को सुने, एहसास को छुपा ले। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत, फिल्म है ममता, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में। और अब सुरभि को दीजिए इजाजत, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा तुरंत रोकने और घटनाओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है। आयोग के अनुसार संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च के दौरान हुई झड़पों में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए हैं। मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि रावलकोट में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबरों से वो चिंतित है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उपायों की समीक्षा की। श्री सोनोवाल ने विदेश मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और ओमान, सऊदी अरब, ईरान, रूस और यूक्रेन सहित कई देशों के भारतीय मिशन प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में वैश्विक समुद्री परिवहन मार्गों पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा, आपात स्थिति में सहायता और तैयारियों की जानकारी दी गई। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग बैठकें कीं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि दोनों बैठकें सकारात्मक और सार्थक रहीं। ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों, ड्रोन समझौते, पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली और शांति वार्ता में प्रगति पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान की कथित गतिविधियों और उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की हरजिंदर कौर ने महिला 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश की पदक तालिका में एक और पदक जोड़ दिया है। हरजिंदर ने कुल 227 किलोग्राम भार उठाया। उन्होंने स्नैच में 101 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम का भार उठाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं सुरभि आपके साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि कितने ही फसाने याद आए, कितने ही सहारे याद आए, कितने ही फसाने याद आए, कितने ही सहारे याद आए।

होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं कि उस दौरान कोई अपना साथ हो। तो ऐसे में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा गीत जिसने आपकी उस तन्हाई, बेचैनी और अनकहे जज्बातों को समेट लिया है। ये सिर्फ एक गीत नहीं है बल्कि उन दास्तानों से बढ़कर दास्तान है, वो एहसास है इसमें जिसमें घुलकर आप अपनी जिंदगी को महसूस कर सकते हैं। तो चलिए सीधे ये धुन जो हमारे रूह तक उतर जाती है, सुनते हैं कुछ अधूरे ख्वाबों को, कुछ अनकही बातों को और कुछ मीठी यादों को याद करते हैं।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। कहते हैं कि मोहब्बत जब पहली बार दस्तक देती है ना, तो दिल को ना वो उम्र याद रहती है ना दुनिया की कोई रस्म, बस एक ही ख्वाहिश होती है कि उस पल को थोड़ा और जी लिया जाए। और जब दिल बेकाबू होने लगता है तब प्यार से कई लफ्ज कई बातें इन दिल से उठती हैं। तो आज एक ऐसा ही नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें बड़ी ही मासूमियत से कुछ ऐसी ही बातें कही गई हैं जिसमें मीठी बेताबी भी है और पहली मोहब्बत की वो कशिश जिसे बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयां किया गया है। और इस गीत को सुनते ही लोगों की जबान पर होठों पर मुस्कुराहट छा जाती है। तो चलिए सुनते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मैं दुनिया की हकीकत जानता हूँ, मैं दुनिया की हकीकत जानता हूँ, किसे मिलती है शोहरत जानता हूँ। तेरी यादें हैं शब बेदारियाँ हैं आँखों को शिकायत जानता हूँ। मैं दुनिया की हकीकत जानता हूँ, किसे मिलती है शोहरत जानता हूँ।

वो आएगा दिल से दुआ तो करो, वो आएगा दिल से दुआ तो करो, मोहब्बत से दिल आशना तो करो, मिलेगा कोई बन के उनवान भी, कहानी की तुम इब्तदा तो करो, तुम्हारे करम से है ये जिंदगानी, मैं बुझ जाऊंगा तुम हवा तो करो, हजारों मनाजिर निगाहों में है, रुकोगे कहाँ फैसला तो करो, वो आएगा दिल से दुआ तो करो, मोहब्बत से दिल आशना तो करो।

और आज सुरमई में चलते चलते अपने अंजाम की तरफ आ चुके हैं, तो अब चलते चलते हम आपके लिए लेकर आए हैं सौदागर फिल्म का गीत कविता कृष्णमूर्ति और मनहर और सुखविंदर की आवाज में।

और इसी के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक. सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में. और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जाँच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2011 के पुराने भर्ती नियम अब प्रभावी नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग बैठकें की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि दोनों बैठकें सकारात्मक और सार्थक रहीं। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों, ड्रोन समझौते, पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली और शांति वार्ता में प्रगति पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान की कथित गतिविधियों और उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मिंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ अभ्यास शुरू हुआ। वायुसेना की टुकड़ी ने बहुराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक भी जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम कर लिए हैं। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और लंबी दूरी के धावक गुलबीर सिंह ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। हरजिंदर कौर स्नैच में 101 और क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम के साथ कुल 227 किलोग्राम का भार उठाया। वहीं एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Lok Sabha took up the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties, such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of the convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh said the new legislation reflects government's resolve not to allow anyone to compromise the future of the youth of the country.
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
1: Participating in the discussion, Congress MP KC Venugopal stressed the need for wider educational reforms and comprehensive changes in the examination system. Several other members, including Basuri Swaraj and Tejaswi Surya of BJP, Priyanka Gandhi Vadra and Gaurav Gogoi of Congress, Abhishek Banerjee of TMC, NCP SP MP Supriya Sule, Dr. Srikant Shinde of Shiv Sena and Akhilesh Yadav and Dimple Yadav of Samajwadi Party took part in the debate. Other members, including BJP's Anurag Thakur and Shashank Mani, Congress MP KC Venugopal, S. Venkateshan of CPIM, Gurumurthy Madala of YSRCP, RJD's Abhay Kumar Sinha, IUML MP E.T. Muhammad Bashir, JMM's Vijay Kumar Hansdag, CPR MP K. Subharan, JDS MP M. Malesh Babu, AIMIM's Asaduddin Owaisi and Harsimrat Kaur Badal of SAD were among those who participated in the discussion. However, the discussion remained inconclusive. Later, the presiding officer Sandhya Ray adjourned the house to meet at 11 a.m. today. The Supreme Court yesterday observed that recent nationwide protests over the NEET paper leak warranted a thorough, fair and impartial investigation into the allegations of injuries to the students and police officials. The Apex Court directed the release of student protesters under the age of 18 who were arrested during the demonstrations and have no previous criminal records. The court asked the authorities to preserve electronic and digital evidence relating to the protests. The three-judge bench headed by Chief Justice Suryakant was hearing a batch of petitions alleging excessive use of police force during the demonstrations. State governments of Maharashtra, Bihar and Assam have decided to withdraw cases and other legal proceedings initiated against students who have recently participated in the protests on the NEET paper leak issue. The move is in line with the center's guarantee that no legal action will be taken against students who participated in the protests. Meanwhile, in consonance with the Supreme Court order, the government of West Bengal has decided not to take coercive measures against students who participated in the protests. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries at his residence earlier yesterday. The Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. At the Commonwealth Games, India's Srihari Nataraj qualified for the semi-final of men's 100-meter backstroke swimming competition at Glasgow in Scotland yesterday. Para swimmers RBVBK Burigina and Ali Imam also qualified for the men's 50-meter freestyle as 13th final. Athlete Vishal Tekke progressed to the semi-final of men's 400-meter race. In boxing, Indian boxer Priyag Hungus jumped into the women's 60kg semi-finals after defeating Scotland's Niamh Mitchell in the quarter-finals. She joined fellow pugilist Preeti Pawar in assuring a medal for India. With the win, the Indian boxer progressed to the semi-finals and moved within one victory of securing a place in the gold medal bout. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का. मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूं और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ.

जब दिलों में सच्चा प्यार बस जाता है तो दुनिया की बातें मायने नहीं रखती। मोहब्बत अपने भरोसे हर इम्तिहान को मुस्कुराकर पार कर लेती है।

सच्चा इश्क सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि दिल की सबसे खूबसूरत इबादत है। इसमें चाहत भी है, सम्मान भी है और उम्र भर साथ निभाने का वादा भी।

जिंदगी का हर सफर आसान हो जाता है जब साथ कोई अपना हो. एक सच्चा हमसफर हर खुशी को दोगुना और हर गम को आधा कर देता है.

प्यार के बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। किसी अपने की मुस्कान और साथ ही जीवन को हर पल जीने का नया कारण दे देता है प्यार। और जब प्यार जीवन में आ जाए तो जिंदगी उसके बिना अपने आप ही पूरी सी लगने लगती है।

कभी कभी किसी की एक झलक ही दिल की धड़कनों को नई रफ्तार दे देती है। लगता है जैसे रात की खामोशी में, चांद खुद मुस्कुराने चला आया हो।

दिल की बातें शब्दों से कम, एहसासों से ज्यादा कही जाती हैं। जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगे तो हर धड़कन एक मीठी दास्तान बन जाती है।

और समय भी कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, आप बने रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ और मैं जल्द वापस आऊंगी 4:10 पर लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए छोड़कर जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला किया है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने कहा कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड है उनके खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2011 के पुराने भर्ती नियम अब प्रभावी नहीं रहेंगे। भारत दुनिया में सीफेयरर्स यानी नाविकों की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। BIMCO ICS सीफेयर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक शिपिंग उद्योग को 3,11,936 समुद्री पेशेवर उपलब्ध कराए हैं। वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत की हिस्सेदारी 12.16% हो गई है। इस सूची में फिलीपींस पहले स्थान पर है, जबकि भारत ने चीन, रूस और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की सहरा फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज से सजाया है लता मंगेशकर ने, संगीतकार रामलाल और गीतकार हसरत जयपुरी।

आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत फिल्म बरसात की रात से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में. संगीतकार आरडी बर्मन, गीतकार आनंद बख्शी.

अभी आपने गीत सुना खून भरी मांग से आशा भोसले और उनके साथियों की आवाज में, संगीतकार राजेश रोशन, गीतकार इंदिवर।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत, फिल्म नई इमारत से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार बपी लहरी और गीतकार इंदिवर।

अभी आपने गीत सुना मन फिल्म से, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। गीतकार समीर, संगीतकार सजीव दर्शन।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म दीवाना से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

और ये कार्यक्रम का आखिरी गीत था। जल्द मुलाकात होगी यानी 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। वहीं चर्चा में भाजपा के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला किया है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड है उनके विरुद्ध कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार अब तक नीट विरोध प्रदर्शन के संबंध में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मिंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ यह अभ्यास शुरू हुआ। वायुसेना की टुकड़ी ने बहुराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक भी जीता। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC के मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए हैं। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। वहीं एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। वे कॉमनवेल्थ गेम्स में स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। मुक्केबाजी में भारत के 3 खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया है। प्रिया घंघास, प्रीति पवार और जादूमणि सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम 4 में जगह बनाई। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर भारत की पदक उम्मीदें कायम रखी हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries for the government at his residence yesterday. During the meeting, Prime Minister Modi reviewed the future action agenda of ministries and departments, dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers to work with a shared sense of purpose. Highlighting the importance of citizen-centric governance, the Prime Minister said that the people of India must remain at the centre of governance. The Lok Sabha will resume the discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 today. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. Moving the bill yesterday, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the new legislation reflects government's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country.
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
1: Participating in the discussion, Congress MP K.C. Venugopal stressed the need for wider educational reforms and comprehensive changes in the examination system.
3: 24, you brought the legislation. After 2 years, you are bringing again a legislation. We are ready to pass the legislation, but I still believe that if you didn't have any sincerity to address the concern of the students of this country, concern of addressing this examination failures, this legislation is not going to serve any purpose.
1: Several other members took part in the debate. However, the discussion remained inconclusive. Later, the presiding officer Sandhya Ray adjourned the House to meet at 11 a.m. today. The Supreme Court yesterday observed that recent nationwide protests over the NEET paper leak warranted a thorough, fair and impartial investigation into the allegations of injuries to the students and police officials. The Apex Court directed the release of student protesters under the age of 18 who were arrested during the demonstrations and have no previous criminal records. The court asked the authorities to preserve electronic and digital evidence relating to the protests. The three-judge bench headed by Chief Justice Suryakant was hearing a batch of petitions alleging excessive use of police force during the demonstrations. The bench permitted the Delhi government to continue investigations into FIRs registered but said no coercive action be taken against protesting students during the pendency of the proceedings. In Jharkhand, security forces have achieved a major breakthrough in the anti-Naxal operations. Top Noise leader and Politburo member Mr. Besra, who carried a bounty of 1 crore rupees, has been arrested from the Dhanbad-Giridih border. Regional committee member Mehnat Alias Mochu, who carried a reward of 15 lakh rupees, Maoist cadre Gaurav and two villagers were also apprehended during the joint operation. The action was carried out by the Cobra, CRPF and Jharkhand police based on the specific intelligence inputs. Amnesty International has called for an independent and transparent investigation into reports of the use of lethal force against protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, by Pakistani forces, while urging Pakistani authorities to restore communication services and allow media and independent observers access to the region. In a statement, Amnesty International's acting regional director for South Asia, Isabel Lassie, reacted to security forces using lethal force against protesters in Rawalpindi during the first day of the regional election. In the Commonwealth Games, India's Harjinder Kaur added another medal to the country's tally at the Commonwealth Games 2026, clinching the silver medal in the women's 69 kg weightlifting competition. Moreover, Indian boxer Madangbum Jadumuni Singh assured the country of at least a bronze medal after outclassing Male Mingo in the men's 55 kg quarterfinals in Glasgow. And that is the end of this news bulletin.

समय हो गया है 5:11 और 9 सेकेंड और ये समय है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस भजन के साथ।

सत्य हमारे जीवन की शक्ति है, शिव कल्याण का मार्ग, और सुंदरता हमारे श्रेष्ठ कर्मों में बसती है। जब विचार सच्चे और कर्म पवित्र हों, तब जीवन स्वयं एक सुंदर गीत बन जाता है।

जिंदगी की असली बहार तब खिलती है जब हम अपनी मुस्कान, अपनापन और खुशियाँ दूसरों के साथ बांटते हैं। बांटी हुई खुशी कई गुना बढ़ जाती है और यही जीवन की सबसे सुंदर दौलत है।